उम्मतें और भी हैं, उनमें गुनाहगार भी हैं, इज्वाले भी हैं, मस्तमय पिंदार भी हैं, इनमें काहिल भी हैं, गाफिल भी हैं, होशियार भी हैं, सैकड़ों हैं कि तेरे नाम से बेजार भी हैं, रहमतें हैं तेरी अगया।

Welcome back after this beautiful song. Welcome back after the hit of the hour. Sunrise Radio 103.2 FM. आप सुन रहे हैं right now. मेरा नाम है अभी और आज सुबह मैं आपके साथ रहूंगा. Welcome to this beautiful start of the weekend. काफी सारे beautiful songs मैं सिर्फ आपके लिए play करने वाला हूँ, आपके लिए dedicate करने वाला हूँ. So stay tuned with me.

वेलकम बैक आफ्टर येट अनदर ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑन सनराइज रेडियो 103.2 एफएम। मेरा नाम है एबी एंड ऑफ कोर्स 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा। मतलब सनराइज रेडियो आप काफी सारे मीडियम के थ्रू भी सुन सकते हैं, आई होप आपको पता है। वेल डैब के जरिए आप सुन सकते हैं इन मैनचेस्टर, एट द सेम टाइम दुनिया के किसी भी कोने में आपने सिर्फ हमारा ऐप डाउनलोड करना है एंड देन देयर यू गो, इंटरनेट के जरिए आप कहीं भी सुन सकते हैं। और हमारी वेबसाइट है ना, सो www.sunrisevideo.fm पे लॉगिन कीजिएगा, सारे अपडेट्स अपकमिंग इवेंट्स सब कुछ आप वहाँ पे देख सकते हैं। एट द सेम टाइम रेडियो का लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। सो कीप दैट इन माइंड एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू।

0: चिड़िया कुमी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्के नती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कनस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: कुल्ला नफसेन जायकातुल मौत
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डारफील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 723030 दास ब्रेडफोर्ड 723030।
4: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?
5: Dila de ghar. Dila de ghar. Bana de ghar. Dila de ghar.
6: Oh my god, this is original.

वेलकम बैक आफ्टर द क्लासिक फ्लैशबैक। मतलब ये कहना चाहता हूँ कि इन गानों को ना कोई भी नहीं बीट कर सकता, इसीलिए कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड। व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग यार, काफी एंजॉय किया मैंने और आई होप आपने भी एंजॉय किया होगा। Well, right now, मेरी और आपकी मुलाकात होगी खबरों के उस पार, which is after the news और the beam, beautiful गानों का सिलसिला चलता रहेगा। So stay tuned with me. I'll see you on the other side.

आशा कर देता हूँ। मेरा नाम है एबी एंड ऑफकोर्स 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूँगा और इस आवर में भी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको मनोरंजन किया जाएगा, अच्छे से गाने आपके लिए मैं प्ले करूँ। तो स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन सनराइज रेडियो 103.2 FM।

Once again, welcome back after yet another beautiful song only on Sunrise Radio 103.2 FM. आशा करता हूँ कि इस वीकेंड की शुरुआत आप काफ़ी enjoy कर रहे हैं. मतलब रिलैक्स भी करना चाहिए, रेस्ट भी करना चाहिए, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम वीकडेज में नहीं कर सकते, काम के टाइम पे नहीं कर सकते. सो आई थिंक एक लिस्ट अगर हम बनाते हैं ना, छोटी छोटी बातें हो सकती हैं, छोटे छोटे काम हो सकते हैं, अगर उन कामों को एक स्मॉल स्पेन ऑफ टाइम में अगर हम फिनिश करते हैं ना, तो पूरे हफ्ते के लिए आई थिंक हमें वरी करने की ज़रूरत नहीं. Just a thought. And of course, the next song is specially dedicated to you.

0: मम्मी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
4: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

Welcome back after the classic flashback only on Sunrise Radio 103.2 FM. Nothing like the golden oldies. But right now, मेरी और आपकी मुलाकात होगी खबरों के उस पार, which is after the news और तभी इन beautiful गानों का सिलसिला चलता रहेगा. कहीं ना आप जाएगा. I'll see you on the other side of this hour. Stay tuned.

इस आवर के तीसरे घंटे में आपका स्वागत है एंड वेलकम बैक आफ्टर द हिट ऑफ द आवर. व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. सनराइज रेडियो 103.2 एफएम आप सुन रहे हैं राइट नाउ. ऑफ कोर्स मेरा नाम है अभी और आज 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा. दिस इज द सेकंड लास्ट आवर ऑफ माय शो. एंजॉय कीजिएगा इस वीकेंड की शुरुआत को, इस सुबह की शुरुआत को और सनराइज रेडियो पर प्ले हो रहे हैं इन गानों को. द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: कुल्लू नफसेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 723030, दास ब्रैडफोर्ड 723030।
4: Here's what's happening across the Sunrise Radio areas over the coming days. First in Bradford, Ruby Wax, absolutely famous, comes to St George's Hall as the comedian, writer and broadcaster brings her latest live show to the city. Also in the Bradford district, the Choir of Man continues at the Alhambra Theatre, combining pub sing-alongs, live music and high-energy musical theatre. Over in Calderdale, Dick and Liddy's Comedy Club returns to the Victoria Theatre in Halifax, featuring another evening of stand-up comedy. And still in Halifax, music fans can enjoy the Peace Hall's summer concert season, with live performances continuing at the iconic open-air venue. In Leeds, Mamma Mia continues its run at the Leeds Grand Theatre, bringing the much-loved ABBA musical to the city. In Manchester, Swedish pop star Robin brings her Sexistential tour to Co-op Live on Saturday. Over in East Lancashire, Blackburn Cathedral continues its programme of summer concerts, exhibitions and special events ahead of the National Festival of Making the following weekend. In Derby, the city's summer festival programme continues with theatre, live music and family entertainment taking place across venues throughout the city. In Milton Keynes, The Karate Kid the Musical continues at Milton Keynes Theatre, bringing the hit stage adaptation to audiences. And finally, in West London, Relics continues at the Lyric Hammersmith, running throughout the summer. And that's your Sunrise Radio event diary.

Welcome back after this beautiful song, only on Sunrise Radio 103.2 FM. काफी मधुर गाना था यार, I just loved it. Only on Sunrise Radio 103.2 FM पर आप सुन रहे हैं इन हसीन गानों को. मेरा नाम है हैरी एंड ऑफ कोर्स 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा. अगला गाना सिर्फ आपके लिए है, डेडिकेटेड.

0: कोई परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: कुल्लू नफसेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300 ब्रैडफोर्ड 7230300।

शो के आखिरी घंटे में आपका स्वागत है। सनराइज रेडियो 103.2 एफएम ऑफ कोर्स आप सुन रहे हैं राइट नाउ। हीरो ऑफ द आवर के बाद आपका है स्वागत वापस इस शो पर। मेरा नाम है अभी, 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा, विच मीन्स दिस इज द लास्ट आवर ऑफ दिस शो। कहीं ना जाइएगा, काफी सारा ब्यूटीफुल म्यूजिक आएगा इस आवर में भी। द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.

0: looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे किचन विच सारा सामान मकिया पी आए आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है
3: तुसी फिकर ए ना करो जी हने ए एशिया सुपरस्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे
2: वाह जी चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं
3: एशिया सुपरस्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5 टेलीफोन 01274464446

वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग सनराइज रेडियो 103.2 एफएम आप सुन रहे हैं राइट नाउ। जस्ट ब्यूटीफुल सॉन्ग है, मुझे भी बहुत पसंद आ गया। मतलब ऐसे गाने होते हैं कि सबको कभी कभी पसंद नहीं आते हैं, पर यू नो यू जस्ट स्टार्टेड फॉलिंग फॉर दिस सॉन्ग, सो दिस वॉज वन फॉर मी। और इसी नोट पर अगला गाना सिर्फ आपके लिए डेडिकेट किया जाता है।

वेलकम बैक टू द क्लासिक फ्लैशबैक ओनली ऑन सनराइज रेडियो 103.2 एफएम। मेरा नाम है अभी और आज इस सुबह 7 बजे से मैं आपके साथ था। काफी मजा आ गया मुझे और मैं आशा करता हूँ कि आपको भी काफी मजा आ गया इन गानों को सुनकर। वेल राइट नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू गो क्योंकि द नेक्स्ट प्रेजेंटर विल बी विद यू। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, योर फैमिली, योर लव्ड वंस और मेरी और आपकी मुलाकात होगी हमारे अगले शो पर। टिल देन अपने वीकेंड को एंजॉय कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स का ख्याल रखिएगा, उनका हाल चाल पूछिएगा। गुड बाय।

0: जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: चाचा जूलर्स ओकलैंड ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे किचन विच सारा सामान मकिया पिया है आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है
3: तुसी फिकर ए ना करो जी हने ए एशिया सुपरस्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे
2: वाह जी चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं
3: एशिया सुपरस्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5 टेलीफोन 01274464446
4: Like a message has ordered.

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे किचन विच सारा सामान मकिया पिया है आटा चावल दालां गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्दा दिन लग जाना है
3: तुसी फिकर ए ना करो जी हने ए एशिया सुपरस्टोर जानेया ते सारी शॉपिंग करके ले आनेया उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे
2: वाह जी चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं
3: एशिया सुपरस्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5 टेलीफोन 01274464446

0: कोई परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
4: दीवाना।
5: एक दीवाना शहर में।
4: एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी।
5: दो दीवाने शहर में।

0: नफ्सेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: जुतियां भी कसी गई पर सस्ता सोना नहीं मिलिया। ओहो, ते तुसा चाचे कोल जाओ ना। चाचा केड़ा चाचा? चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले। जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी, नक्का नतीला है सिर्फ 2 पौंड ना। कान सलाने ना एक पौंड, छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं। ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है, ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने। एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता। चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274 4 8 9 3 5।

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे किचन विच सारा सामान मकिया पिया है आटा चावल दालां गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्दा दिन लग जाना है
3: तुसी फिकर ए ना करो जी हने ए एशिया सुपरस्टोर जानेया ते सारी शॉपिंग करके ले आनेया उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे
2: वाह जी चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं
3: एशिया सुपरस्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5 टेलीफोन 01274464446

0: नफ्सेन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कब्र को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
0: कोई परोंठे शुरूंठे नई मिलन लगे किचन विच सारा सामान मकिया पिया है आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है
2: तुसी फिकर ए ना करो जी हने ए एशिया सुपरस्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे
0: वाह जी चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं
2: एशिया सुपरस्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5 टेलीफोन 01274464446।

0: सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो, ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पाउंड ना कनस लाने ना 1 पाउंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स 1192121 ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274056014 सोफी ज्वेलर्स।

0: Jaja!
1: Are you based in the UK? Are you a content creator, streamer, podcaster, gamer, influencer? Or maybe you've always wanted to become one?
2: Then it's time to join the Sunrise Creator Network, powered by Sunrise Radio, the number one Asian hit music station. As part of the network, you'll receive extra publicity, marketing support, promotion across our radio, digital and social media platforms, opportunities to grow your audience, collaborate with other creators and build your personal brand.
1: Whether you're just starting out or already creating content, we're here to help you get seen, get heard, and grow faster. Join a community of creators supporting creators and take your content to the next level.
2: To apply, simply visit www.sunrise.radio and complete the Creator Network application form. That's www.sunrise.radio. Applications are open now for creators across the UK.
1: The Sunrise Creator Network, helping the next generation of creators grow, connect, and succeed.
3: गलियां गलियां कुमी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
4: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
3: चाचा केड़ा चाचा?
4: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड नाइन आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कहने तीला सिर्फ दो पौंड ना कानस लाने ना एक पौंड छापा ते बंगा नी कोई मजदूरी नी ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
3: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
4: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड नाइन टेलीफोन 01274488935।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

0: कुमी ते पैरन ये जुतियां ही कसीगियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744462 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.

तो खुदा ने पाला, कोई उसे क्या मारे जिसका रब है रखवाला। वो अपने मददगारों का मुहाफिज है, अल्लाह।